परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथ ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथ ही सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ, ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ, ਭਗਵਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਤਮਾ, ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कास्ता ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घरां दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों ने? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने निमंत्रण दिता है ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ढीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ढीठ होके नहीं मंगदा, ढीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई ढीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तूं भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ होकर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चय ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी अपनी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

नार पराई है। पराई स्त्री वन लुक अंदर छाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू तां कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात, भाई जोगा

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की तू तो ए भी कहने लग गया कि गुरु नू पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिख का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए ता जा तेन बख्शिया आखो बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

इतना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया है। सानू इस अनमोल खजाने की पहचान हो जाए, वाहेगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। सतसंग जी, जपजी साहब की इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

अपने गुरसिखा नजर आना, तेरा प्रताप तेरे गुरमुखा गुरसिखा नजर आना, तेरी सेवा करने वाले तू नजर आना। जेड़े जप तप करते हुए जीवन नूं किसे जुगत संजम च रखते ने, इत्थे साहिब कहिंदे ने उन्हां लोकां दी ऐसी गल है, साध संगत कह आस रहे प्रभ की प्रभ से रंग लाए, जीवन च औगण नहीं रहिंदे औगण कट, मुख उजला हर नाम तराए, जन्म मरण पौ कटेन फिर जोन ना पाए, अंध कूप ते काढ़ेन लड़ आ फड़ाए, नानक बख्श मिलायन रखे गल लाए। पर उन्हां दी गल है जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहिब जी पातशाह ने जुगत बख्शी।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

दो प्रेमी आए इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने, उन्हां भी संदोखड़ी विच पैसे पाए, मत्था टेकिया, वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन, कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जई फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। ओ तुरदे तुरदे इन्हां सारियां लोकां दे सामने आके बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिया। एक मुसाफिर मालक जापदा, एक नौकर। नौकर कहन लगा, ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है, किवें इहदा मन परमेश्वर दे नाल जुड़े है। उस मालक दा नौकर मुस्कुरा पिया, मुस्कुरा के अपने नौकर नूं, हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी नाल?

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मेनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नो कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

जिन्हां ने गज साढ़े तै तै धोतियां, साढ़े तीन तीन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, तेहरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाए।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई तनी आदमी

इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गया, गल्लां बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली गुआच गई है, किधरे तुसा देखी ता नहीं? ते नामदेव जी दूर बैठे हुए सन, ओ हस पे।

अपना वड्डा पण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही उधर एक हवा का बुला आया उस पेखी संत का आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नू छड़ दिता ते उस पेखी संत नू फड़ के कुटन लग

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जाता है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह कर दियां ने चलो पैना बड़े वड़े संत महापुरश आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन कर दे ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदी ने संत समझ के ते उदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के खा जांदे।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले। है भाई मैं पखंड नहीं करदा, उस परमेश्वर दा नाम जपे है उदे नाल मिल गया। है भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

जदू बाबर ने हमला करना है ता हर पासे दुखां दे वैण होणगे, लोकी रोणगे कुरलाणगे, ते संदूर दी जगह इन्हां दे सिरां विच लहू।

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखता है पर एक गल है ओदा न्याओ सच्चा है आप भी ओ सच्चा है ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

शेर शाह सूरी नू कहे कि एक ओ भी समा आवेगा कि पहला बाबर दा कब्जा हिंदुस्तान ते होवेगा। ओ बाबर नू हिंदुस्तान दे विचो

उस परमेश्वर दे ए जीव किन्ने दुखी ने, आपां भी चली नाल तुर पए। मीर खान ने अपना कोड़ा मर्दाने नूं फड़ाया, गुरु साहिबां नूं पार चुकण

किसी दी बांह वड्डी, किसी दा सिर पट है, कोई रो रहा है, कोई कुरला रहा है। जिस तरह एक फोटोग्राफर फोटो खिंचदा है, उस वेले दी हालत देख के वो नक्शा गुरु साहिबां ने अपने शब्द विच इउं खिंचिया है।

0: फिर शुक्र कीता। आदेश कहंदे ने मथा टेकना, ऐ बाबा ऐ अकाल पुरख मैं तेनू नमस्कार करदा, क्यों कि तेरा किसे ने अंत नहीं पाया, तू कदी सुख देना है कदी दुख देना है।
1: आदेश बाबा आदेश,

मंडप महला कहां सुबंग सराय। ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया

पर कोई भी मुगल अन्ना ना होया, किसे ने भी जेड़े पीर ते फकीर कहंदे सन असी मंत्रा नाल इन्हां नूं खत्म कर देंगे, उन्हां मुगलां ते कोई मंत्र

हिंदवाणी तुरकाणी पटियारण ते ठकुराणी किसे दा सिर पाट गया किसे दियां बाहां वड़ियां गईयां कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया भाव कि सिपाहियां ने किसे दा भी लिहाज नहीं किया।

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच किथे जाके रोईए क्योंकि सब कुछ तेरे हुक्म विच है तू जो चाहे ओही हुंदा है किदे कोल जाके अपना दुख

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते लै जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन दा दिन जदों मुक जाएगा

ये ता तू हमेशा इत्थे रहना है ता घर बार बनाई जा। पिंड कहंदे ने इस शरीर नू, इस शरीर विचू आत्मा निकल गई ते शरीर खत्म हो जाएगा।

वो क्यों मर गया? उन्हू नहीं सी मरना चाहिए। जेड़ा मर गया है ना उन्हू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने उन्हें तो मरना ही सी। जिन्हू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू कौन रोवेगा।

एक गल और कही ऐ इंसान ए ना कहो कि गुरु नानक कहंदा है सब कुछ छड़ दियो। हां मैं कहना पर विचार तू

अपने ते दोष नहीं लिया। इमना बाद दे लोक बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के इमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिता।

पर फिर ताना मारिया, फिर शुक्र विच आ गए। ए करता अकाल पुरख, तू सारिया दा है, पर एक गल है, जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू। जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा, पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी। बाबर दे कोल बंदूकां सन ते इमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन, ए कोई बराबर।

कवि मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़ियां दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई वारी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता

इस शब्द का उपदेश किया। फिर बाबर ने बेनती की, मेरे ते कृपा करो, मेरा राज अटल रवे। गुरु साहब ने कहा, बाबर किसी का राज अटल नहीं रहा, पर हां जे सच ते चलने तुहाडा राज रहेगा। गुरु साहबां दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा राज हिंदुस्तान ते शुरू होया। ज्यों ज्यों बाबर दी वंश ने सच ते न्याय ते प्रजा दी देखभाल कीती, इन्हां दा राज चलदा रहा। जदों इन्हां ने जुल्म शुरू कीते ते औरंगजेब दे वेले जिन्ने जुल्मां दी अत चुकी, इन्हां दा राज खत्म हो गया। गुरु नानक साहब तो राज शुरू होया ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दे वेले इन्हां मुगलां दा राज जिहड़ा सी इह फिर खत्म होना शुरू हो गया। सच ते चले राज रहा।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए वाहू का जतन सो संचो जो होछी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कबै न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय